0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: गजा में शहरी दिफा

0: सरकारी मीडिया के मुताबिक बुध को चीन के दारुकूमत बेजिंग में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस पर हुकाम को सियाहती मकाम बंद करने, बस सर्विसेज और तामीराती काम मुअत्तल करने और ख़तरे से पूरे इलाकों के रिहायशियों को मुंतकिल करने पर मजबूर होना पड़ा है। शहर में 300 से ज़ायद सियाहती और कैंपिंग मकाम बंद, 4,100 से ज़ायद मुसाफिर खानों की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि तकरीबन 250 बस रूट्स को बंद कर दिया गया है तो 10 सबवे लाइनों पर चलने वाली ट्रेनों को कम रफ्तार पर चलाने का हुक्म दिया गया है। सियाहत के लिए चलने वाली तमाम कश्तियों की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि पहाड़ी देहातों, नशीबी इलाकों और सैलाब और ज़मीनी आफात के खतरात के हामिल दीगर मकामात के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मंगल दोपहर से बुध की सुबह तक बीजिंग में औसतन 23.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हंगामी सैलाब कंट्रोल इकदाम के तहत शहर भर के 3,357 तामीराती मकामात को काम मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है और इजाफी गुंजाइश बनाने के लिए आबी ज़खायर को खोल दिया गया। कौमी मौसमियाती मरकज़ ने बुध को ज़ोरदार बारिश के लिए अपना नारंगी अलर्ट जारी करते हुए मुल्क के वसी हिस्से में जुमेरात की सुबह तक शदीद बारिश की पेशगोई की है।
1: इसके साथ ही सदाए तुर्की खबरें खत्म हैं।

बड़े पहाड़ को काटकर शहर के अंदर मौजूद शिलवाम के तालाब तक लाया जाएगा। मगर उस दौर में ना तो कोई नक्शा मौजूद था और ना ही पैमाइश का कोई जदीद आला। फौरन ही खुदाई करने वाली दो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम सुरंग के एक सिरे से खुदाई शुरू करती है और दूसरी बिल्कुल मुखालिफ सिमत से। वो घुप अंधेरे में सिर्फ मिट्टी के चरागों की टिमटिमाती रोशनी में काम करते हैं। पहाड़ के अंदर कुदाल चलने की आवाज़ें गूंज रही हैं और वो एक दूसरे को देखे बगैर मीटर ब मीटर एक ही हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर तारीख का शायद सबसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का शाहकार वजूद में आता है। क्या आप ये बात जानते थे? तकरीबन 2700 साल पहले बग़ैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के चट्टानों को तराशने वाली ये दोनों टीमें पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में 1 मिलीमीटर के हिसाब की दुरुस्तगी के साथ आपस में मिल गईं। मजदूरों को जब पहाड़ के अंदर से एक दूसरे के कुदाल चलने की आवाज़ें करीब से सुनाई देने लगीं तो उन्होंने आखिरी चंद मीटर का फासला इंतहाई जोश व खरोश से खोदा और बिलाखिर एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को गले लगा लिया। आज के दौर के इंजीनियर्स भी हैरत से इस बात का मुतालिया करते हैं कि उस दौर के महदूद वसाइल के साथ ये बारीक बिन हिसाब किताब कैसे किया गया होगा। और इस सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज भी अलकुद्स जाने वाले जायरीन 2700 साल पहले बनाए गए इस सुरंग के अंदर घुटनों तक आने वाले ठंडे पानी में चल सकते हैं। लेकिन अलकुद्स का ज़ेर ज़मीन हाफिज़ा सिर्फ पानी की इन सुरंगों तक ही महदूद नहीं है। जब आप ज़रा और आगे बढ़ते हैं तो आप ख़ुद को ज़मीन से कई मीटर नीचे दफन एक कदीम रूमी सड़क पर पाते हैं। एक लम्हे के लिए रुककर जब इंसान सोचता है तो दंग रह जाता है। आज जिन जदीद सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उनके ऐन नीचे वक्त की थमी हुई पथरीली राहें बिछी हुई हैं। कभी इन पत्थरों पर ताजिर मसाले लेकर गुजरते थे, रूमी सिपाही गश्त करते थे, दूर दराज के इलाकों से आए हुए जायरीन चलते थे और उन गलियों में बच्चों के कहकहे गूंजते थे। आज हम उनके कदमों तले दबी मिट्टी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि तारीख खामोशी से हमारे पैरों के नीचे सांस ले रही है। लेकिन उन पुरसरार ज़ेर ज़मीन रास्तों का क्या? माहरीन आसार कदीमा अभी तक इस बात को पूरी तरह हल नहीं कर पाए कि अलकुद्स के नीचे बनी उन तमाम सुरंगों का असल मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ पानी की निकासी के लिए थी या मुहासिरे के वक्त फरार होने के रास्ते थे या फिर ये वो खुफिया इबादतगाहें थीं जहां लोग पनाह लेते थे? शायद ये सभी कुछ था। मुख्तलिफ अदवार में हर एक रास्ते को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। अलकुद्स एक ऐसी किताब की मानंद है जिसका आखिरी सफहा कभी नहीं लिखा जा सकता। जमीन के नीचे से निकलने वाला हर पत्थर माजी की एक नई कहानी हमारे कानों में फूंक देता है। एन उसी मोड़ पर एक बहुत ही हसास और अहम मामले का जिक्र करना जरूरी है जो आज के दौर में भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। अलकुद्स में की जाने वाली बाज आसार कदीमा की खुदाइयां अब सिर्फ एक साइंसी तहकीक से कहीं बढ़कर हैं। ये शहर के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और उसकी तारीखी शनाख्त की तशरीह के लिहाज से बड़े बैनुल अक़वामी तनाज़ियात के मरकज में आ चुकी है। यूनेस्को समेत कई बैनुल अक़वामी तंजीमें अक्सर ये याद दिलाती रहती हैं कि अलकुद्स यहूदी, मसीही और मुस्लिम माशरों का एक मुश्तरक विरसा है। वो इस कसीरुल सकाफती और कसीरुल तहजीबी ढांचे के तहफ्फुज़ पर ख़ास जोर देती हैं। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी माहरीन और सकाफती विरसे के नुमाइंदे एक जायज़ और इंतहाई संगीन इंतबाह जारी करते हैं। वो गहरे अंदेशे का इजहार करते हैं कि ज़मीन के नीचे की ये जाने वाली ये बेलगाम खुदाइयाँ शहर के हज़ारों साल पुराने तबई ढांचे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, हत्ता के मस्जिद अक्सा समेत दीगर कदीम इमारतों की बुनियादों को कमज़ोर करके इन तारीखी आसार और ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी को बराह रास्त ख़तरे में डाल रही हैं। मजीद बरआँ शहर की इस मालामाल शनाख्त को सिर्फ एक मखसूस तारीखी नज़रिए तक महदूद करने की कोशिशें भी इन खदशात को बढ़ाती हैं, क्योंकि अलकुद्स को अलकुद्स बनाने वाली चीज़ ये नहीं है कि ये किसी एक दौर या किसी एक तहजीब का रहा है, बल्कि इसकी असल खूबसूरती और दौलत इस बात पे छुपी है कि इसने हज़ारों साल से यहाँ से गुजरने वाली तमाम तहजीबों के नक्श अपने सीने पर सजा रखे हैं। ज़मीन के नीचे से निकाले जाने वाला हर पत्थर हमारे सामने उस सच्चा

का एतराफ करता है कि अलकुद्स पूरी इंसानियत का मुश्तरका हाफिजा है। शायद कुछ शहर सिर्फ आसमां की तरफ ही नहीं फैलते, कुछ शहर अपने हाफिजे को जमीन के नीचे छुपा कर रखते हैं। आज हमने अलकुद्स की जेर जमीन तहों का एक छोटा सा सफर इकट्ठे तय किया। हमने उन कहानियों पर कान धरे जो ये पत्थर सुनाते हैं, और हमने देखा कि एक शहर के नीचे दरअसल कितने शहर आबाद हो सकते हैं। लेकिन इस सरजमीं का हाफिजा सिर्फ जमीन के नीचे ही तो सांस नहीं ले रहा, यह कभी किसी कारीगर के नीले और सख्त हाथों में, कभी सदियों से ना बदलने वाले किसी हुनर में, और कभी सब्र के साथ परवान चढ़ने वाले जैतून के दरख्त के साए तले अपनी जिंदगी बरकरार रखे हुए हैं। चुनाचे अगले हिस्से में हम जमीन के नीचे से निकलकर उन कारीगरों के हाथों को छुएंगे। हम फलस्तीन के उन कदीम फनून, मेहनत और उस मिटाए ना जाने वाले सकाफती हाफिजे के नकूश तलाश करेंगे जो सदियों से जिंदा हैं। अगली किस्म में दोबारा मुलाकात होने तक हम फलस्तीन की अन छुपी हुई कहानियों को बेनकाब करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।